मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमा मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

बड़ी डिफी बड़ी डिफी कल्टी कल्टी डिफिकल्टी से मिलता है तकीला नकीला हबाहूबा लबालूबा दुम तक दुम तक

उजान रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

साथ ले जिसको भी कातिल बनाया, उसे प्यार करने के काबिल बनाया, हर एक हुस्न वाले का हासिल बनाया। और यहाँ

जिसे इसने मारा उसी को दिलाया, दिलाकर जवानी का सदका दिलाया, निगाहों को जलवों का मुहूर्त पिलाया और मोहब्बत

लगे, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सवाने लगे, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सवाने लगे।

हिंदू मुस्लिम इस तरह करते हैं उनका एहतराम, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बाब रहमान राम राम। सैकड़ों अपराध भी है आपका लुत्फे अजीम, आपकी रहमत से माला माल है बाबा करीम। आज भी अनवर वो ताजा बाग में आबाद है, उनके खादिम हर

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनर टूर ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज शुक्रवार 21 तारीख के अगस्त का प्रोग्राम आप लोग सुनने के जा रहे हैं। फ्राइडे इन द अगस्त। हमसे पहले प्रोग्राम को बना रहे तैयार जय राशिदी दंके बाओ फाइन दख्तु खवेंस फाइन वीकेंड हमारी तरफ से। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह हो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज के जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। Inmiddels 13 minuten over 9. Goedemorgen allemaal. Kriben 13 minuten bij dit hotje kwalig nou bachker. Aap sabi sunne waluko shubdin. Aaj shukrwaar ka mausam itna moiba. Ya wel, pani barse hai. Lekker weer. तू चाय बना ले या तो कॉफी बना ले, अगर आप चाय या तो कॉफी ना पिए है तो एक गिलास गर्म पानी तू बना ले अपने खान, इसो लेकर। अगर आप लोग बैठ करके ऑन बैठ करते होंगे तो स्वादिष्ट ऑन बैठ कीजिए, बेंचो ऑन ऑन बैठन एच स्मैकल कलम आओ बेंचो ऑन वैरक वैरक से काम पर बाटे मोई से काम करिए। उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे से खोले जाएंगे, शाम में 3 बजे तक। यहां का फोन का नंबर है 0209-0807। उजाला का वेबसाइट का पता है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिलेगा। चलिए प्रोग्राम को हम आरंभ करते हैं एक सुंदर सा भजन से। आप लोग सुनेंगे लक्ष्मी चालीसा और इस चालीसा को गाने वाले होंगे अनुराधा पौलवल जी।

और इतना सुंदर सा लक्ष्मी चालीसा जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने अनुराधा पौलवल जी के आवास में, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनवलू, आप को एक शुभ दिन। और आप दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं कुछ मिले जुले संगीत से आप सभी सुनने वालों को हम खिदमत करने वाले हैं, और आशा है कि आज का प्रोग्राम भी आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आएगा।

और जो भी आप लोग वीकेंड में आज करेंगे, बस यार प्यार से ये दुलार से कर लेना। दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं कुछ मिले जुले संगीत से, आप सभी सुनने वालों को हम खिदमत करने वाला हूं। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को आज सुबह का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूं। आप सभी को हम वेलकम कहते यार, चाहे जहां पर आप हमें सुनते होंगे, सुनते ही जाइए दिन में 12 बजे तक, तो साथ हम रहे दिन में 12 बजे तक।

और यू आर उजाला रेडियो है, 9:30 का वक्त है, 3:30 एंड द हां शेयर में देखा जाए भाई अनंत जग्गू भी प्रोग्राम को सुने हैं एंड है सौंदर्य ऑटोबा में बैठकर सुने। तो भाई जी ये गाना तुम्हारे नाम

वेल वेल यार, थोड़ा से प्यार हुआ है एंड थोड़ा से है बाकी। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। और देखा जाए

0: वेल मेरी तरह भी प्यार करके देखो ना, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम एकदम खरौ निगन शहर में भाई एम रऊ प्रोग्राम को बरकर सुने खुद मोर्ख। और देखा जाए तो करीबन पौने पौने दस का वक्त वीकेंड यार, वीकेंड तो हमें चाहे जो जीतू करिए बहुत ही प्यार से दुलार से करिए, मैं ना नहीं तो ना करिए यार, हम तो से बोले नहीं ना करिए, प्यार ना करिए तो ना करिए। तो चलिए भाई एमरो ये गाना तुम्हारे नाम।
1: बेटा आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो समाने को जीत पाए।

हल बलियार आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और यू आर उजाला रेडियो और देखा जय ब्रीडा शहर में प्रोग्राम को बैठकर सुने गायत्री खुद मोर्ख और यह गाना तुम्हारे नाम

और दिल का रिश्ता, वेल दिल का रिश्ता कितना प्यारा है, और दिलवा हमार तो पागल है यार, दिलवा हमार पागल है। एंड चलिए इस बार संद्रा भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख ये गाना तुम्हारे नाम प्यार के साथ, वेल दिलवा हमार पागल है यार।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे शिव सुनने वालों आप ही को शुभ दिन। और उजाला रेडियो का दफ्तर खोले गए है, दिन में 3 बजे तक खुला रहेगा। यहाँ का फोन का नंबर है 9 3 9 9 9 7 पर आप लोग तार कर सके। वेल एगो रसेप और अंदर आयल हेगा राकेश पठाई से। रसेप बोले भाई फंदाग वर्त ते इनफोदग बोले ब्रेन बोन मेट गबरादन किप और लेवर के सांबल। आई बोई कितना मोई लेकर चाहे जोंची आप लोग बनाइए। और अगर कुछ ना हुई तो कल्हिया के भात बचल हुई तो के भूज लिए। और एगो अंडा डाडी अंडा ना हुई तो अपने बिफ्रवा भी बरवल ये अंडा ले निकल लिए और लातर जब बना लिए तो के थोड़ा से दे दिए तो अपन कर्जा डायरेक्ट उतार दे ले। ऐसे ऐसे होए है थोड़ा से लेने के लिए बिफ्रो या बिरमान लगे से मांग ने मौके दे दिए थोड़ा से खाई। ओके चलिए यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए और गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस तरह से ही अब की बार गाना आप लोग सुनेंगे सोनू निगम एन दिलवा मांगे मोर। यावेल दिलवा मांगे मोर यार हम तो लोग से बता चुकली है दिलवा चाहे जैसे बोलिए दिल तो दिल है यार। दिलवा जोन ची मांगे हैं दिलवा के कसूर है। तोर कसूर ना है तोर दिल के कसूर है।

और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने यार, एंड यू आर उजाला रेडियो। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए फैंस ऑफ ओल्डर में एमी जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने। तो एमी जी ये गाना तुम्हारे नाम, भीगी भीगी रातों में यार, या वेल

रल भीगी भीगी रातों में तुम आओ ना एंड ऐसी बरसातों में तुम आओ ना औ सनम की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और देखा जाए प्रोग्राम को भी बैठकर सुने दीमन शहर में फौसिया, तो फौसिया ये गाना तुम्हारे ना।

गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और देखा जाए पियान शहर में भी अंबिका एंड रीता भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। जबाल हतीस भाई ना वीकेंड यार, आप सभी को, सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड। हमारे

वल माफ कर दे तू, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और देखा जाए करण हाउस में भी सुनीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने। गुड मॉर्निंग, ये गाना तुम्हारे नाम।

और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे अरिजीत सिंह जी की आवाज में, और अब की बार गाना जो आप लोग सुनेंगे उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, आज शुक्रवार 21 तारीख अगस्त का प्रोग्राम फ्राइडे देखा खुश और मेरे शहर में माला मुंगार भी प्रोग्राम को बैठकर सुने। गुड मॉर्निंग।

वेल तुम ही तो मेरे पास हो। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड एम्स्टर्डम में पहली बार सौदागर भी प्रोग्राम को बैठकर सुने। खुद मोरख ये गाना

0: कसम है मुझे
1: तेरा साथ निभाने की,
0: हर मोड़ पे तुझे
1: अपना बनाने की,
0: कभी ना छोड़ू
1: कभी ना तोड़ू
0: ये रिश्ता दिल का।
2: दिल का रिश्ता वेल साथ तेरा फॉर एवर। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, बोलो दिल दिल तेरा कभी ना छोड़ेंगे, तू मेरा साथ देना यार।

नहीं है। बल खफा है दिल एंड करीबन 20 मिनट बाकी रहा, 20 मिनट बाकी रहा 11 बजने में एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो खास करके देवेंद्र सिंह शिवनाथ एंड

बलियार दो साथी जीवन की अवसरों से खास के देवेंद्र सिंह शिवनाथ एंड सविता सिंह के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम देखा जाए।

अरे यार, दिन रात तुझसे प्यार करूं, दिल चुरा ले। और ब्रेडा शहर में श्रीमान और श्रीमती बिहारी प्रोग्राम को बढ़कर सुने, तो चलिए ये गाना आप लोग के नाम कर देता हूं। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप सुनेंगे इस तरह से, जाओ आई बॉय चलेंगे।

वेल यार, अरे बता देना क्या है इरादे तू बुलबुल के अवसर से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। ओ दिलदार बोलो एक बार। अरे यार, यू आर उजाला रेडियो दी हतवान अम्स्टरडम शहर से प्रोग्राम को हम बना रहे हैं और मैं हूं सुभाष शिव गोविंद। गुड मॉर्निंग तेलबरख में परिवार एल से चमन भी प्रोग्राम को बरकर सुने हैं। वीकेंड तो है यार, चलन दे। अरे गुड़िया

आई बोय हमार दिलवा करे ढक ढक ढक, दिलवा बोले यार। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

वल वल यार बैना बैना बैना बैना फर यारी है बैना बैना जब कुछ हो यार वेल यू आर के जरिए बैना बैना 11 बजने वाले हैं।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, ना दे ब्रेक ना दे रखलाम बहन मित्रों की यार, कितना हल्ली 11 बज गए हैं और देखिए कितना हल्ली 12 बज जाए। हाँ यार, वीकेंडों में आप लोग चाहे जो ची करिए, वीकेंडों में तो लोग मोई से पकाइए, मोई से खाइए, मोई से पिए, मोई से रहिए एंड मोई से प्यार करिए यार। आई बोल, जो भी करिए प्यार से करिए, नहीं तो ना करिए। ये वादा हम तो उसे बोली लो, अन वादा करी लो।

भल यार ऐसे तू मुझे ना देखो एन सीने से तुझको लगा लूंगा। आयुष राज से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और देखा चाहिए माखरी तनवाल दो भी प्रोग्राम को सुने हैं। गुड मॉर्निंग

वेल वेल यार, जाने कहा मेरा जिगर गया दिल। वेल अभी अभी तो यही था, न जाने कहा हमार दिलवा चल गया। एंड प्रेमरत में लक्ष्मी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं। खुद मोर है।

पल यार मैं भावरा तू है पूल देवेंद्र सिंह शिवनाथ एंड सविता सिंह जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने हे यू आर उजाला रेडियो वीकेंड वा यार वीकेंड वा आई बॉय हियर वी गो

वाल वाल यार प्यार कोई सितम नहीं करना, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुन लो, एंड शुक्रवार का प्रोग्राम जो आप लोग सभी सुन रहे हैं, थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ हम देने वाले हैं।

और जान से प्यारा जो तू मिले यार, आओ इस तरह से इश्क के आगे और गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

वेल वेलियर दिल तेरा औरा जी मेरा हुआ अल तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। लाइस शहर में देखा जाए सानू भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं। खुद मुर्ख है

दिल से दिल मिले, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुन लो अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन के तो देखा जाए सत्य भी प्रोग्राम को बैठकर सुने। तो इस गाने को मांग किया है 100 साल पहले या वो

और जोन गणवा नत्यु लगतु मंगले है नत्यु लकी वाला होना चाहिए एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं लवल पौने 12 का वक्त है तो सेंट मिडल स्क्वाट फॉर 12 और ढेर मिला ऑन बैठ कर है ढेर मिला भात भूज के कहा है सवेरे सवेरे फुरुकु फुरुकु सवेरे सवेरे बोले पराठा रोटी में तो मर

बल यार, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है एंड कल भी रहेगा। दरहाग सेफनगन में जहां पर श्रीमान लक्ष्मण भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मुर्खा। एंड अलमेरा में प्रकाश एन इफोन चंद्रिका सिंह।

अल करीबन 5 मिनट बाकी रहा 12 बजने में। इसका मतलब ये हुआ कि हम आप लोग सब इजाजत चाहेंगे। और यही आशा है कि जिस तरह से प्रोग्राम को हमने बनाए सजाए आज आप लोगों के लिए, आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आए होंगे। हमारा साथ देना, हमारे साथ देने के लिए और हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को बस बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से मिलने वाले हैं यहीं पर जहां पर हम छोड़ करके जा रहे हैं। आप लोग अपना वीकेंड वा मोई से मनाइयो, मोई से बिताइयो, जो भी आप लोग करेंगे प्यार से दुलार से कलीना।

हम आप लोग से मिलेंगे आने वाले इतवार को शाम में 3 बजे से. आप लोग मौज रहियो. आप सभी सुनने वालों को एक मौज वीकेंड पैन वीकेंड तो खमें हमारी तरफ से. जो भी करना है आज कर लेना, कल के बाद आना कर, कल तू ना दिख लेना. हम आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज. खिदमत की आपका दोस्त सुभाष सिंह गोविंद. बाय बाय, स्वाई स्वाई.

ब्रांस एफएम में अगर आप आएंगे पूरा परिवार के साथ आएंगे तो बच्चों के वास्ते फॉर किंडरगार्टन टॉट 1 मीटर ग्रेटस आप अंदर जा सकते हैं। आ रहे हैं आपके लिए द बैंड का गायक स्टीवन केदार।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

बाल भक्त प्रहलाद को हरि ने नरसिंह बने कर तारा। कितने ही बार दयानिधि ने, कितने ही बार दयानिधि ने संसार को आके उमार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने

पूरा तोर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा

अब प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों फार्डीन जो भी रहेगा और ब्रासाफेस्ट जाटरडाग 29 एंड जोंदाग 30 अगस्तस इन जिया इवेंट सेंटर एन मत भूलना koop je tickets, je super early bird tickets, nu vanaf slechts €8,50 via brasafest.nl. Toe je liker.

अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर ये शानदार सिनेमा जो कि पेश किया गया है. चेक फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन उजाला.nl उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर हॉलैंड भर में.

आम्स्टर्डम के रहने वाले समस्त परिवार रामदीन बहादुर के साथ ये सूचना को कर है कि गत 17 तारीख अगस्त को 89 साल की आयु में लेफ्टाइट फॉर 89 यार आम्स्टर्डम में आम्स्टर्डम के रहने वाले स्वर्गीय कृष्ण कुमारी रामदीन पलटू के पति लड़कन रिकार्डो रामदीन शिरडी और परिवार आइवन और परिवार हैंक और परिवार और तेलमा और परिवार के पिता ससुर नाना और आजा आम्स्टर्डम के रहने वाला श्रीमान अल्बर्ट योहान सुदत रामदीन का देहांत हो गया है। जिन लोग ज़्यादा बैट के नाम से जानते थे सुरीनाम में इनको या इनका दुकान था विंकल रामदीन और कॉमवेन रेंसडॉर्फ बाकी के जो रहने वाला था। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार रामदीन बहादुर के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते 17 तारीख अगस्त को 17 अगस्त को 89 साल की आयु में आम्स्टर्डम में स्वर्गीय कृष्ण कुमारी रामदीन पलटू के पति लड़कन रिकार्डो रामदीन शिरली और परिवार आइवन और परिवार हैंक और परिवार तेलमा और परिवार के पिता ससुर नाना और आजा आम्स्टर्डम के रहने वाला श्रीमान अल्बर्ट योहान सुदत रामदीन का देहांत हो गया है। जिन्हें लोग ज़्यादा बैट के नाम से जानते थे सुरीनाम में कॉमवेन रेंसडॉर्फ बाकी के जो रहने वाला था और इनका दुकान का नाम था विंकल रामदीन। अर्थी से आखिरी मौका है विदाई लेने के लिए आने वाले सोमवार आनस्तानदम मानदक 24 अगस्त के रात के समय सरे 6 से लेकर 7 बजे तक फ्रेडरिक रुस्कस्ट्रैट 21 आम्स्टर्डम में दाह क्रिया को किया जाएगा। आने वाले मंगलवार 25 तारीख अगस्त को क्रेमासीस आनस्तांद दिनसदाग 25 अगस्तस फनाफ 1:30 क्रेमाटोरियम वेस्टगार्डन ओक मेरवेग 275 आम्स्टर्डम में समस्त परिवार जान पहचान से निवेदन है इस खबर को और दूर तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार रामदीन के दुख में शामिल है। यहां तक आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है मृत समाचार।

0: gentlemen, may I have your attention, please? The show.
1: Ja, ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer. Toen Jan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm garm, warme brasa. उजाला रेडियो रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगेगा विल जाय बरिखी स्टूरे नार ओंस स्टूडियो हाँ विल जाय बरिखी स्टूरे नार ओंस स्टूडियो दन कैन दैट स्टूर योर बरिख नार 020-363-0808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

ब्रांस फैंस में अगर आप आएंगे पूरा परिवार के साथ आएंगे तो बच्चों के वास्ते फॉर किंडरगार्टन टॉट 1 मीटर ग्रेटस आप अंदर जा सकते हैं। आ रहे हैं आपके लिए द बैंड का गायक स्टीवन केदार।

सुनिया पक्की 420 सुनिया पक्की 420 मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंती दुनिया 420।

0: है रीत निराली, सुन सब लेते हर एक वाली, अक्ल का अंधा गाट का थोड़ा, दिल में मुहब्बत पाके टपाले।
1: टिम टिम टिम टिम।

इनको चाहिए मोटा बकरा मोटर साड़ी सुर में दानी। जहाँ भी तकड़ा इंजन देखा करती शंकम शंकी दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

हो भाई, बीवी बच्चे बहन और भाई सब है मतलब के कैदाई, जेब गरम तो यार हजार, कड़की हो तो कौन हो भारी। एक दिन इनको माल न दो फिर देखो फंटम की दुनिया, 420 दुनिया पक्की, 420 दुनिया पक्की, 420 मार मार गे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल, दुनिया 420